0: कैसेट प्लेयर 93.6 FM।
1: एक्सपीरियंस करूँ मेरे मिल्क सोपार एर मिल्क लोशन प्रतिबार गोसलेर पर अमर त्वक रखे नरम और मसृण। মেরিল মিল্ক সোপার, দুধ দিয়ে গোসল হোক প্রতিদিন।